राम नाम सुमरसना कहते कर प्रसादया प्रभतारी नानक निबिह खेप हमारी प्राप्त की उस्तत करो संत मीत सावधान एकाग्र चीत सुखमणि सहज गुमत गुरु नाम जिस मन बसै सो होत निधान सर्व इच्छा ताकी पूर्ण होए प्रधान पुरख प्रगट सब लोए सब ते ऊच पाए अस्थान बौर न होवै आवन जान हर धन खाड़ चलै जन सोए नानक जिसह प्राप्त होए खेम शांत रिद नव निद बुद्ध ज्ञान सर्वतै सिद्ध विद्या तप जो प्रभ ध्यान ज्ञान श्रेष्ठ उत्तम इशनान चार पदार्थ कमल प्रगास सब कै मद सगल ते उदास सुंदर चतुर तत का बेता समदर्शी एक दृष्टेता ए फल तिस जन कै मुख भने गुर नानक नाम बचन मन सुने।

जुग अटल शब्द अवतार ब्रह्म ज्ञान के दाते चवर छत्र तख दे मालक तन तन साहब श्री गुरु ग्रंथ साहब जी दी पावन और पवित्र हजूरी अंदर जुड़ बैठी गुरु रूप साध संग जी सतगुरु पातशाह जी दी कृपा आयनायत वर्त रही है। जो गुरु दरबारा अंदर सानू हाजरियां भरन दा सुभाग समा प्राप्त होया है। आओ कुछ कु समा हुण गुरु शब्द विचार नाल जुड़न वास्ते साहब श्री गुरु ग्रंथ साहब जी दे चरणा दा ध्यान तरीए सारे ही एक बार कहण ते हाजरियां लवाइए रसना करिए पवित्र आखिए जी वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। साहब श्री गुरु ग्रंथ साहब जी सृष्टि दे उपर जो मार्गदर्श दर्शक ने जो गुरमत दे आसे ते जीवन गुजारदे ने वो साहब श्री गुरु ग्रंथ साहब जी दे भाव नू अंदर प्राप्त कर लैंदे ने हिरदे दे अंदर प्रेमा भगती दे द्वारा परमेसर वाहिगुरु जी दे प्यार नू प्राप्त कर लैंदे ने। साहब श्री गुरु ग्रंथ साहब जी की बाणी सानू जगत के उपर जीवन की जात बख्शिश करती है कि प्राणी तू जीवना किवें है समझ सानू श्री गुरु ग्रंथ साहब जी के शब्द द्वारा पैंदी है। जदों जीव शब्द के नाल जुड़ता है गुरु के दसे हुए सिद्धांत ते चलता है सतगुरु पातशाह जी हिरदे के अंदर भाव भगती बख्शिश कर देंदे ने फिर ये जगत तो किवें भाव सुखैन ही पार होना है ये जुगती शब्द के द्वारा सानू सतगुरु पातशाह जी ने बख्शिश की है। जिमें जिहड़े गुरमत दे नाल गुरसिख जुड़े ने जिन्हां ते कृपा है अमृत वेले जदों गुरु शब्द की बाणी पढ़ते ने पंजां बाणियां दा नितनेम करते हाँ सानू साडे साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह दसम पातशाह जी ने प्यार दे नाल ये समझ दित्ती है कि सारे जगत के मत्तां मतंत्रां नू जोगियां नू हठियां नू तपियां नू मुनियां दे मोन नू खोज के देखिया है सबद तो बिना सारे ये रस्ते विच अटके हुए ने। अकाल पुरख परमात्मा दे स्वरूप की पछाण नहीं भाव उत्थे तक अपड़ना इन्हां वास्ते मुश्किल है। जदों त्वै प्रसाद सवैये की बाणी असीं पढ़ते हाँ सतगुरु पातशाह जी अपनी रसना द्वारा फरमाउंदे ने कि सराव गसुद समूह सधान के देख प्रयोग कर योग जति के सूर सुरार्दन शुद्ध सुदादक संत समूह अनेक मति के सारे ही देश को देख रहे हो मत को ना देखित प्राण पति के श्री भगवान की पाए कृपा हूं ते एक रति बिन एक रत्ती के। अकाल पुरख परमात्मा दे सिमरन तो बिना एक रत्ती जिन्ना भी तेरा कौडी भी मुल नहीं जीव जिन्ना चिर परमात्मा दे नाम दे नाल तू नहीं जुड़दा। सतगुरु पातशाह जी कहिंदे ने कि ये जेड़े जोगी है हठी है तपी है मुनी है इन्हां दे मोन नू वेख्या है सराव गसुद समूह सधान के भाव ये जितने भी भाव अमृत नू पीण वाले सेरे ने शुद्ध सुदादक देवते ने अमृत नू पीण वाले ने सतगुरु पातशाह जी कहिंदे ने जोगियां दे जोग नू देखिया हठियां दे हठ नू देखिया मुनिया दे मोन नू देखिया तपस्या दे तप नू देखिया। सतगुरु पातशाह जी कहिंदे सारिया दे मत्तां मतंत्रां नू देख के ये गल सतगुरु पातशाह जी ने निर्णा सिद्ध किया है कि को ना देखित प्राण पति के भाव वह प्राणा का पति मालक है वो दर्शन कोई भी नहीं प्राप्ति कोई भी नहीं कर सकिया ये सारे रस्ते अटके हुए ने क्योंकि जेडे वेद शास्त्र ने इन्हों जिनी क समझ आई इन्ह ने उन्ना ज्ञान जोड़ा है भाव वंडिया है। सतगुरु पातशाह जी कहते पूर्ण केवल तो केवल अकाल पुरख परमात्मा ही अपने बारे दस सकता है। सतगुरु कहते ने ए वड ऊंचा होवे कोए तिस ऊंचे को जाने सोए उस अकाल पुरख परमात्मा नू समझण वास्ते उहदे नाल मिलाप करन वास्ते उहदे गुणां दी बहुत जरूरत है ते गुण सानू गुरबाणी दे विच्चों मिलदे ने। गुरु प्यार वालेओ जिवें एक असी भाव बेड़े ते चढ़ के जहाज ते चढ़ के समुंदर तों दूसरे किनारे ते जाणा होवे किसे नदी नू दरिया नू पार करना होवे ते सानू बेड़े दी लोड़ है जहाज दी लोड़ है इस तरह भाव ये 84 लाख लहरां वाला एक समुंदर है संसार।

ब्रह्मज्ञानी जपै सगल संसार। ब्रह्मज्ञानी कै इकै रंग, ब्रह्मज्ञानी कै बसै प्रभ संग। ब्रह्मज्ञानी कै नाम आधार, ब्रह्मज्ञानी कै नाम परवार। ब्रह्मज्ञानी सदा सद जागत, ब्रह्मज्ञानी अहम बुद्ध त्यागत। ब्रह्मज्ञानी कै मन परमानंद, ब्रह्मज्ञानी कै घर सदा आनंद। ब्रह्मज्ञानी सुख सहज निवास, नानक ब्रह्मज्ञानी का नहीं विनाश। ब्रह्मज्ञानी ब्रह्म का बेता, ब्रह्मज्ञानी एक संग हेता। ब्रह्मज्ञानी कै होए अचिंत, ब्रह्मज्ञानी का निर्मल मंत। ब्रह्मज्ञानी जिस करै प्रभ आप, ब्रह्मज्ञानी का बड़ प्रताप। ब्रह्मज्ञानी का दर्श बड़ भागी पाइय, ब्रह्मज्ञानी को बल बल जाइय। ब्रह्मज्ञानी को खोजै महेश्वर, ब्रह्मज्ञानी आप परमेश्वर। ब्रह्मज्ञानी की कीमत नाहीं, ब्रह्मज्ञानी कै सगल मन माहे। ब्रह्मज्ञानी का कौन जाने भेद, ब्रह्मज्ञानी को सदा आदेश। ब्रह्मज्ञानी का कथिया न जाय आखिर, ब्रह्मज्ञानी सर्व का ठाकुर। ब्रह्मज्ञानी की मित कौन बखाने, ब्रह्मज्ञानी की गत ब्रह्मज्ञानी जाने। ब्रह्मज्ञानी का अंत न पार, नानक ब्रह्मज्ञानी को सदा नमस्कार। ब्रह्मज्ञानी सब सृष्टि का कर्ता, ब्रह्मज्ञानी सद जीवै नहीं मरता। ब्रह्मज्ञानी मुक्त युक्त जी का दाता, ब्रह्मज्ञानी पूर्ण पुरख विधाता। ब्रह्मज्ञानी अनाथ का नाथ, ब्रह्मज्ञानी का सब ऊपर हाथ। ब्रह्मज्ञानी का सगल आकार, ब्रह्मज्ञानी आप निरंकार। ब्रह्मज्ञानी की शोभा ब्रह्मज्ञानी बनी, नानक ब्रह्मज्ञानी सर्व का तनी श्लोक। उरतारे जो अंतर नाम, सर्व में पीखे भगवान। निमख निमख ठाकुर नमस्कार, नानक ओह अपरस सगल निस्तार। अष्टपदी ब्रह्मज्ञानी मिथ्या नाहीं रसना परस, मन में प्रीत निरंजन धरस। पर त्रय रूप न पिखे नेत्र, साध की टहल संत संहेत। कर्ण सुने काहू की निंदा, सब ते जाने आप उसको मंदा। गुर प्रसाद बिकिया पर हरै, मन की बासना मन ते टरै। इंद्री जित पंच दोख ते रहत, नानक कोट मदे को ऐसा परस। वैष्णो सोजिसु प्रसो प्रसन्न, विष्णु की माया ते हुए भिन्न। कर्म करत हूँ वह निह कर्म, तिस वैष्णो का निर्मल धर्म। काहू फल की इच्छा नहीं बाछै, केवल भगत कीर्तन संग राचै। मन तन अंतर सिमरन गोपाल, सब ऊपर होवत कृपाल। आप दृढ़ अवरै नाम जपावै, नानको वैष्णो परम गत पावै। भगवती भगवंत भगत का रंग, सगल त्यागै दुष्ट का संग। मन ते बिनसै सगला भरम, कर पूजै सगल पार ब्रह्म। साध संग पापा मल खोवै, तिस भगवती की मत उत्तम होवै। भगवंत की टहल करै नितनीत, मन तन अर्पै बिसन प्रीत। हर के चरण हृदय बसावै, नानक ऐसा भगवती भगवंत को पावै। सो पंडित जो मन पर बोधै, राम नाम आत्मै सोधै। राम नाम सार रस पीवै, उस पंडित के उपदेश जग जीवै। हर की कथा हृदय बसावै, सो पंडित फिर जो न आवै। वेद पुराण सिमृत बुझै मूल, सूखम मैं जानै स्थूल। चौवरना को दे उपदेश, नानक उस पंडित को सदा आदेश। बीज मंत्र सर्व को ज्ञान, चौं वर्णा मैं जपै को नाम। जो जो जपै तिसकी गत होए, साध संग पावै जन कोए। कर कृपान तरुर तारै, पास प्रेत मुग्ध पाथर को तारै। सर्व रोका उखद नाम, कल्याण रूप मंगल गुणगाम। काहू जुगत कितै न पाइय धर्म, नानक तिस मिलै जिस लिखिया तुर कर्म। जिसकै मन पार ब्रह्म का निवास, तिसका नाम रख सत रामदास। आत्म राम तिस नदरी आया, दास संतन भाई तिन पाया। सदा निकट निकट हर जान, सो दास दरगह प्रवान। अपने दास को आप कृपा करै, तिस दास को सब सोजी परै। सगल संग आत्म उदास, ऐसी जुगत नानक रामदास। प्रभ की आज्ञा आत्म हितावै, जीवन मुक्त सोग कहावै। तैसा हरख तैसा सोग, सदा नन तै नहीं वियोग। तैसा स्वर्ण तैसी उस माटी, तैसा अमृत तैसी बिखाटी। तैसा मान तैसा इमान, तैसा रंग तैसा राजान। जो वरताए साई जुगत नानक, ओ पुरख कही है जीवन मुक्त।

संत की निंदा नानका बहर बहर अवतार तत्पदी संत कै दुखन आरजा कटै संत कै दुखन जमते नहीं छुटै संत कै दुखन सुख सब जाए संत कै दुखन नरक मह पाए संत कै दुखन मत होए मलीन संत कै दुखन सो बाते ही न संत के हते को रखै ना कोए संत कै दुखन थान भ्रष्ट होए संत कृपाल कृपा जे करै नानक संत संग निंदक भी तरै संत कै दुखन ते मुख पवै संतन कै दुखन काग न्यो लवै संतन कै दुखन सर्प जोन पाए संत कै दुखन त्रिगत जोन करमाए संतन कै दुखन तृष्णा मह जलै संत कै दुखन सब को छलै संत कै दुखन तेज सब जाए संत कै दुखन नीच ने चाए संत दुखी का थाओ को नाहै नानक संत भावे तां ए भी गत पाहे संत का निंदक महायात ताई संत का निंदक खिन टिकन ना पाई संत का निंदक महा हत्यारा संत का निंदक परमेश्वर मारा संत का निंदक राज तेहीन संत का निंदक दुखिया यार दीन संत का निंदक सर्व रोग संत का निंदक सदा बेजोग संत का निंदा दोख मैं दोख नानक संत पावै तां इस का पी होए मोख संत का दुखी सदा पवित संत का दुखी किसै का नहीं मित संत के दुखी को डान लागै संत के दुखी को सब त्यागै संत का दुखी महा अहंकारी संत का दुखी सदा बेकारी संत का दुखी जन्मै मरै संत की दुख ना सुख ते टरै संत के दुखी को नाहीं ठाओ नानक संत पावै तां लय मिलाए संत का दुखी अद बीते टूटै संत का दुखी कितै काज न पहुँचै संत के दुखी को ध्यान परमाइयै संत का दुखी उजड़ पाइयै संत का दुखी अंतर ते थोथा ज्यों सास बिना मृत की लोथा संत के दुखी की जाड़ किश ना है न्यापन बीजा पे ही खा है संत के दुखी को अवरना राखन हार नानक संत पावै तां लय उबार संत का दुखी इउं बेल लाए ज्यों जाल बेहून मछली ताड़ फड़ाए संत का दुखी भूखा नहीं राजै ज्यों पाव कई दन नहीं त्रापै संत का दुखी छुटै अकेला ज्यों बार तिल खेत माहे दोहेला संत का दुखी धर्म ते रहत संत का दुखी सद मिथिया कहत किरत निंदक का तुर ही पया नानक ज्योत सुभावै सोई थिया संत का दुखी बिगड़ रूप होए जाए संत के दुखी को दरगाह मिले सजाए संत का दुखी सदा सहकाई है संत का दुखी ना मरै ना जीवाई है संत के दुखी की पूजा ना आसा संत का दुखी उठ चलै निरासा संत कै दुख न तृष्टै कोए जैसा भावै तैसा कोई होए पया किरत न मिटै कोए नानक जानै सच्चा सोए साब काट तिसके ओ करनै हार सदा सदा तिसको नमस्कार प्रभ की ओ सत करो दिन रात तिसै त्याव सास ग्रास साब कछ वरतै तिसका किया जैसा करे तैसा को थिया अपना खेल आप करनै हार दूसर कौन कहे विचार जिसनो कृपा करे तिस आपन नाम दे बड़भागी नानक जन से श्लोक तज हो सियानप सुर जनो सिमरो हर हर राय एक आस हर मन रखो नानक दुख परम पौ जाए अष्टपदी मानुख की टेक पृथ्वी सब जान देवन को एक है भगवान जिसके दिए रह अकाए बहुना तृष्णा लागे आए मारे राखै एको आप मानुख कै किछु नाहीं हाथ तिसका हुकम बू सुख होए तिसका नाम राख कंठ परोए सिमर सिमर सिमर प्रभ सोए नानक बिघन न लागै कोए उस्तत मन मैं कर निरंकार कर मन मेरे सत व्यवहार निर्मल रसनामृत पियो सदा सुहेला कर लै जियो
ਨੈਨੋ ਭੇਖ ਠਾਕੁਰ ਕਾ ਰੰਗ, ਸਾਧ ਸੰਗ ਬਿਨਸੈ ਸਭ ਸੰਗ, ਚਰਨ ਚਲੋ ਮਾਰਗ ਗੋਬਿੰਦ, ਮਿਠੈ ਪਾਪ ਜਪੀਐ ਹਰ ਬਿੰਦ। ਕਰ ਹਰ ਕਰਮ ਸਰਵਨ ਹਰ ਕਥਾ, ਹਰ ਦਰ ਗੈ ਨਾਨਕ ਉਜਲ ਮਥਾ, ਬਿਡ ਭਾਗੀ ਤੇ ਜਨ ਜਗ ਮਾਹੈ, ਸਦਾ ਸਦਾ ਹਰ ਕੇ ਗੁਣ ਗਾਹੈ। ਰਾਮ ਨਾਮ ਜੋ ਕਰੈ ਵਿਚਾਰ, ਸੇ ਤਨਵੰਤ ਗਨੀ ਸੰਸਾਰ, ਮਨ ਤਨ ਮੁਖ ਬੋਲੈ ਹਰ ਮੁਖੀ, ਸਦਾ ਸਦਾ ਜਾਨੋ ਤੇ ਸੁਖੀ। ਏਕੋ ਏਕ ਏਕ ਪਛਾਨੈ, ਤੁਤ ਕੀਓ ਸੋ ਜੀ ਜਾਣੈ, ਨਾਮ ਸੰਗ ਜਿਸ ਕਾ ਮਨ ਮਾਨਿਆ, ਨਾਨਕ ਤਨੈ ਨਿਰੰਜਨ ਜਾਣਿਆ। ਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦ ਆਪਣੇ ਆਪ ਸੁਜੈ, ਤਿਸ ਕੀ ਜਾਨੋ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਬੁਜੈ, ਸਾਧ ਸੰਗ ਹਰ ਹਰ ਜਸ ਕਹਿਤ, ਸਰਬ ਰੋਗ ਤਿਓ ਹਰ ਜਨ ਰਹਿਤ। ਆਨ ਦਿਨ ਕੀਰਤਨ ਕੇਵਲ ਬਖਿਆਨ, ਗ੍ਰਹਿਸਤ ਮੈਂ ਸੋਈ ਨਿਰਵਾਨ, ਏਕ ਉੱਪਰ ਜਿਸ ਜਾਨ ਕੀ ਆਸਾ, ਤਿਸ ਕੀ ਕਟੀਐ ਰਾਮ ਕੀ ਫਾਸਾ। ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਕੀ ਜਿਸ ਮਨ ਭੂਖ, ਨਾਨਕ ਸਹਿ ਨਾ ਲਾਗੈ ਦੁਖ, ਜਿਸ ਕੋ ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਮਨ ਚਿਤ ਆਵੈ, ਸੋ ਸੰਤ ਸੁਹੇਲਾ ਨਹੀਂ ਡੁਲਾਵੈ। ਜਿਸ ਪ੍ਰਭ ਆਪਣਾ ਕਿਰਪਾ ਕਰੈ, ਸੋ ਸੇਵਕ ਕਉ ਕਿਸਤੇ ਡਰੈ, ਜੈਸਾ ਸਾ ਤੈਸਾ ਦਿਸ ਟਾਇਆ, ਆਪਣੇ ਕਾਰਜ ਮਹਿ ਆਪ ਸਮਾਇਆ, ਸੋਧਤ ਸੀਜਿਆ, ਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦ ਤਤ ਸਭ ਬੂਜਿਆ, ਜਬ ਦੇਖੋ ਤਬ ਸਭ ਕਿਛ ਮੂਲ, ਨਾਨਕ ਸੋ ਸੂਖਮ ਸੋਈ ਅਸਥੂਲ, ਨੈ ਕਿਛ ਜਨਮੈ ਨੈ ਕਿਛ ਮਰੈ, ਆਪਣ ਚਲਤ ਆਪ ਹੀ ਕਰੈ। ਆਵਨ ਜਾਵਨ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਆਨ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ, ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਤਾਰੀ ਸਭ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ, ਆਪੇ ਆਪ ਸਗਲ ਮਹਿ ਆਪ, ਅਨਕ ਜੁਗਤ ਰਾਜ ਥਾਪ ਉਥਾਪ। ਅਵਿਨਾਸੀ ਨਾਹੀ ਕਿਛ ਖੰਡ, ਧਾਰਨ ਧਾਰਿਓ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ, ਅਲਖ ਅਪੇਵ ਪੁਰਖ ਪ੍ਰਤਾਪ, ਆਪ ਜਪਾਏ ਤਾਂ ਨਾਨਕ ਜਾਪ। ਜਿਨ ਪ੍ਰਭ ਜਾਤਾ ਸੋ ਸੋਭਾਵੰਤ, ਸਗਲ ਸੰਸਾਰ ਉਦਰੈ ਤਿਨ ਮੰਤ, ਪ੍ਰਭ ਕੇ ਸੇਵਕ ਸਗਲ ਉਦਾਰਨ, ਪ੍ਰਭ ਕੇ ਸੇਵਕ ਦੁਖ ਵਿਸਾਰਨ। ਆਪੇ ਮੇਲ ਲਏ ਕਿਰਪਾਲ, ਗੁਰ ਕਾ ਸ਼ਬਦ ਜਪ ਪਏ ਨਿਹਾਲ, ਉਨਕੀ ਸੇਵਾ ਸੋਈ ਲਾਗੈ, ਜਿਸਨੋਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਹਿ ਬੜ ਭਾਗੈ। ਨਾਮ ਜਪਤ ਪਾਵੈ ਬਿਸਰਾਮ, ਨਾਨਕ ਤਿਨ ਪੁਰਖ ਕਉ ਉੱਤਮ ਕਰ ਮਾਨ, ਜੋ ਕਿਛੁ ਕਰੈ ਸੋ ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਰੰਗ, ਸਦਾ ਸਦਾ ਬਸੈ ਹਰ ਸੰਗ। ਸਹਿਜ ਸੁਪਾਏ ਹੋਵੈ ਸੋ ਹੋਏ, ਕਰਨੈ ਹਾਰ ਪਛਾਣੈ ਸੋਏ, ਪ੍ਰਭ ਕਾ ਕੀਆ ਜਨ ਮੀਠ ਲਗਾਨਾ, ਜੈਸਾ ਸਾ ਤੈਸਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਨਾ, ਜਿਸ ਤੇ ਉਪਜੇਤ ਸਮਾਹੇ ਸਮਾਏ, ਓਏ ਸੁਖ ਨਿਦਾਨ ਉਨਹੂ ਬਨ ਆਏ। ਆਪਸ ਕੋ ਆਪ ਦੀਨੋ ਮਾਨ, ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਭ ਜਾਨੇ ਕੋ ਜਾਨ। ਸਲੋਕ ਸਰਬ

जिस हो वै सो प्रसन्न। अष्टपदी अविनाशी प्रभ मन में राख, मानुख की तू प्रीत त्याग। तिस्ते परै नाही किस कोए, सर्व निरंतर एको सोए। आपे मीना आपे दाना, गहर गंभीर गहीर सुजाना। पार ब्रह्म परमेश्वर गोबिंद, कृपा निधान दयाल बख्शंद। सा तेरे की चरणी पाओ, नानक कै मन हो अनराओ। मनसा

सारे बोल के अभ्यास करिए जी। वाह गुरु, वाह गुरु, वाह गुरु, वाह गुरु, वाह गुरु, वाह गुरु, वाह गुरु, वाह गुरु, वाह गुरु, वाह गुरु, वाह गुरु, वाह गुरु, वाह गुरु, वाह गुरु, वाह गुरु, वाह गुरु, वाह गुरु, वाह गुरु, वाह गुरु, वाह गुरु, वाह गुरु, वाह गुरु, वाह गुरु, वाह गुरु, वाह गुरु, वाह गुरु, वाह गुरु, वाह गुरु, वाह गुरु, वाह गुरु, वाह गुरु।

एक ओंकार श्री वाहिगुरु जी की फतेह। पातशाही दसवीं चौपाई पुन राशिस का काटा सीसा श्री अस्केत जगत के ईसा पोहपन भ्रष्ट गगन ते पई सब हिन आन बधाई दई। धन धन लोगन के राजा दुष्टन दाह गरीब निवाजा। अखल पवन के सृजन हारे दास जान मोहले हो उबारे। कब्यो बाच बेनती चौपई हमरी करो हाथ दै रक्षा। पूर्ण होए चित की इच्छा तब चरणन मन रहे हमारा। अपना जान करो प्रतपारा हमरे दुष्ट सबै तुम काव हो। आप हाथ दै मोहि बचाव हो। सुखी बसै मोर परिवार सेवक सिख सबै करतारा। मोर अच्छा निज कर दै करिय सब बैरन को आज संगरिय। पूरन होए हमारी आसा तोर भजन की रह प्यासा। तुम्हें छाड़ कोई अवर न त्याऊं जो बर चाहो सो तुम ते पाऊं। सेवक सिख हमारे तारिय है चुन चुन सत्र हमारे मारिय है। आप हाथ दे मुझे उबरिय मरण काल का त्रास निवरिय। हो जो सदा हमारी पच्छा श्री अस्तु जो करियो रक्षा। राख ले हो मोहे राखन हारे साहिब संत सहाय प्यारे। दीन बंद दुष्टन के हंता तुम हो पुरी चतुर्दश कंता। काल पाए ब्रह्मा बवतरा काल पाए शिवजू अवतरा। काल पाए कर बिशन प्रकाशा सकल काल का किया तमाशा। जवन काल जोगी शिव कियो वेदराज ब्रह्मा जू थियो। जवन काल सब लोक सवारा नमस्कार है ताही हमारा। जवन काल सब जगत बनायो देव दैत जक्षन उपजायो। आदि अंति कै उतारा सोई गुरु समझियो हमारा। नमस्कार तिस ही को हमारी सकल प्रजा जिने आप सवारी। शिवकन को सब गुण सुख दियो सतरन को पल मुँह बद कियो। घट घट के अंतर की जानत भले बुरे की पीर पछानत। चीटी ते कुंचर अस्थूला सब पर कृपा दृष्ट कर फूला। संतन दुख पाए ते दुखी सुख पाए साधुन के सुखी। एक एक की पीर पछानै कट कट के पट पट की जानै। जब उदकर्ख करा करतारा प्रजा तरत तब देहि अपारा। जब आकर्ख करत हो कब हों तुम मैं मिलत देहि तर सब हों। जेते बदन सृष्ट सब तारै आप आपनी बोझ उचारै। तुम सब ही ते रहत निरालमा जानत भेद भेद अर आलमा। निरंकार निर्विकार निर्लंब आद अनिल अनाद असंब। ताका मूढ़ उचारत भेदा जाको भेव न पावत बेदा। ताको कर पाहन अनुमानत महामूढ़ कछ भेद न जानत। महादेव को कहत सदा शिव निरंकार का चीनत न पिव। आप अपनी बुद है जेती बरनत भिन्न भिन्न तो तेती। तुमरा लखा न जाए पसारा के बिन सजा प्रथम संसारा। एक रूप अनूप स्वरूपा रंग पयो राव कहीं पूपा। अंडद जेरज सेतज कीनी उत्पुज खान बहुर रच दीनी। कहूँ फूल राजा हवै बैठा कहूँ सिमट पयो शंकर इकैठा। सिगरी श्रेष्ठ दिखाए अचम पव आद जुगाद स्वरूप स्वयं पव।
आव रक्षा मेरी तुम करो, सिखियो बार सिख संगरो, दुष्ट जिते उठवते उत्पाता, सकल मलेश करो रण काता, जे अस्तु तब सरणी परे, तिनके दुष्ट दुखित हवै मरे, पुरख जवन पग परे तिहारे, तिनके तुम संकट सबटारे, जो कल को एक बार त्यय है, ताके काल निकट नह ऐ है, रक्षा होए ताहि सब काला, दुष्ट रिष्ट टरे तत्काला, कृपा दृष्ट तन जाहिन हर हो, ताके ताप तनक मैं हर हो, रिद्ध सिद्ध कर्मो सब होई, दुष्ट शाह श्वस कै न कोई,

कृपा करी हम पर जगमाता, ग्रंथ करा पूरन सुब्राता, किल बिख सगल देह को हरता, दुष्ट दोखियन को शय करता, श्री अस्तु जब भय दयाला, पूर्ण करा ग्रंथ तत्काला, मन बांछत फल पावे सोई, दुख न तिसे व्यापत कोई, अड़िल सुने गुंग जो याहे सुरस न पावई, सुने मूड चित लाए चतुरता आवई, दुख दर्द पौ निकट न तिन नर के रह, हो जो याकी एक बार चौपाई को कह, चौपाई संबत सत्रह है सहस पणिजय, अर्ध सहस पुन तीन कही जय, भाद्रव सुदी अष्टमी रववारा, तीर स्तद्रव ग्रंथ सुधारा, सवैया पाए गहे जब ते तुमरे, तब ते को आंख तरे नहीं आन्यो, राम रहीम पुराण कुरान, अनेक कहे मत एक न मान्यो, सिमृत शास्त्र भेद सब, बहु भेद कहे हम एक न जान्यो, सिमृत शास्त्र भेद सब, बहु भेद कहे हम एक न जान्यो, श्री असपान कृपा तुमरी कर, मैं न कहियो सब तो ही बखान्यो, दोहोरा सगल द्वार को छाड़ के।

संतउ बार गनी मन गादे पछ पशु नग नाग निराधप सर्व समय सबको प्रतिपार भुखत है जल में थल में पल में कल के नहीं कर्म विचारे दीन दयाल दयानिध दोखन देखत है पर देत ना हरे दीन दयाल दयानिध

तुम मात पिता हम बारिक ते तुमरी कृपा में कोई न जान तुमरा अंत ऊंचे ते ऊंचा भगवन सगल समग्री तुमरे सूत्र तारी तुम ते हो सो

सतगुर की सेवा सफल है, जे को करे चित लाए। मन चिंदिया फल पावना, होमें विचो हो जाए। सेव कीती संतोखाई, जिनी सचो सच त्याया। ओनी मंदै पैर न रखियो, कर सुकृत धर्म कमाया। ओनी दुनिया तोड़े बंधना, अन्न पानी थोड़ा खाया। तू बख्शीसी अगला, नित देवै चढ़ै सवाया। वड्याई वड्डा पाया, वड्याई वड्डा पाया। सो कहो टल गुर सेविया, अहिनिस सहज दर्शन परसे आए। गुरु कै जन्म होवै।

वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु देखते देखते पंथ की राज करेगा राज

रव्यो सामान निरंतर उदारो चित दार धरन पिखंते कल मल त्रसन सदरंग सहज कल उचरे जस जंपो लहण रसन उदारो चित

0: सर्वंदरी है,
1: सर्वत्र मानिए के सर्वत्र दानी है,
0: सर्वत्र गौणे के सर्वत्र पाणे है,
1: सर्वत्र देश है के सर्वत्र पेशे,
0: सर्वत्र राजे के सर्वत्र साजे,
1: सर्वत्र दीने के सर्वत्र लीने,
0: सर्वत्र जाहो के सर्वत्र पाहो,
1: सर्वत्र देश है के सर्वत्र पेशे,
0: सर्वत्र काले के सर्वत्र पाले,
1: सर्वत्र अंधा के सर्वत्र कंता,
0: सर्वत्र पेखी के सर्वत्र पेखी,
1: सर्वत्र काजे के सर्वत्र राजे,
0: सर्वत्र सोखा के सर्वत्र भूखे,
1: सर्वत्र त्राणे के सर्वत्र प्राणे,
0: सर्वत्र देश है के सर्वत्र पेशे,
1: सर्वत्र मान्य से दैव प्रदानी,
0: सर्वत्र जाग्य के सर्वत्र थाजे,
1: सर्वत्र पाने के सर्वत्र माने,
0: सर्वत्र इंद्र के सर्वत्र चंद्र,
1: सर्वं कलिमे के परमं फहिमे,
0: आकर नामे के साहेब के नामे,
1: सर्वजुहद मामर जुहद
0: हमें सदा में।

भगवत ईशान तो प्रसाद के जाहिर जहूर है के हाजिर हजूर है के साहिब दिमाग है के हुस्नल चराग है के रोजी दहिंद है के राजक रहिंद है गनी मुल्क राज है गनी मुल निवास है कलंकन प्रणास है समस्तुल निवास है समस्तुल जुबा है के साहिब के राह है के सरबुल का वन है हमें सुल रवन है परम परम ईस है समस्तुल अदीस है जमीनुल जमा है अमीकुल इमा है अचलंग प्रकाश है कि अमितो सुभास है कि अमितो पसा है कि आत्म प्रभा है मधुबार छंद प्रसाद मुन मन प्रणाम गुनगन मुदाम अनगन प्रणाम मुन मन सलाम पवनास मुन मन प्रकाश अंशिज अंग आसन पंग।

जल थल मंड दिस्विस अपंड अनपव अनासिर तर तुरास ओंकार आद कथनी अनाद कर कर प्रणाम चिच्चरण नाम अनचुंज काद अनरंज बात आडीट तरमत टीठ करम कर बोल मना छंत व प्रसाद करणालय है अरकाले है जगतेश्वर है परमेश्वर है तिथ के तरण है जग के करण है सर्वंग पर है सर्वंग कर है करुणाकर है विश्वंबर है ब्रह्मंडस है खलखंडस है अजप्पा जप है थपा थप है अमृतामृत है करणाकृत है अमितेश्वर है परमेश्वर है अजबाकृत है अमृतामृत है विश्वंबर है करणालय है भवपंजन है अर्गंजन है अकलन कृत है सर्वाकृत है परमात्म है सर्व आत्म है भुजंग पर्यात छंद नमो सूर्य सूर्य नमो।

स्वरूपे नमो जोग जोगे नमो ज्ञान ज्ञाने नमो जुद जुदे नमो ज्ञान ज्ञाने नमो कलय कर्ता नमो सांत रूपे अलंकार रूपे अलंकार अलंके अपंगी स्वरूपे अनंगी अनामे एक अक्षरी छंद अजय अलय अभय अभय अगंज अपंज अलख

0: अथ छंदनमस्तुल प्रणामे समस्तुल प्रणस्ये
1: अनंजुलनामे समस्तुल निवासे
0: निरकामन विभूते समस्तुल स्वरूपे
1: कर्म प्रणासी सुधर्मं प्रभूते
0: सदा सच्चिदानंद सर्वं प्रणासी
1: करिमल कुलिंदा समस्तुल निवासी
0: वाहेगुरु सदा सच्चिदानंद सतरंग प्रणासी
2: करिमल कुलिंदा समस्तुल निवासी
0: अजाय विभूते गजाय अवगनी में
1: हरियम करियम करिमल रहिमे
0: चतुर चक्रवर्ती चतुर चक्र पुक्ते
1: शंभ

0: सूर चुराडन शुद्ध सुदादत संसमू अनेक मति के
1: सारे ही देश को देख रहे हो मत को न देखित प्राण पति के
0: श्री भगवान की पाए कृपाओं ते एक रति बिने एक रति के
1: माध्यम तंग जले जल संग अनूप तंग सुरंग सवारे
0: को तुरंग तुरंग से कुदर पौन के गौन को जात निवारे।

हमारा अपना जान करो प्रीत पारा। सुखी बसे मोरो परिवार सेवक सिंह सब करता रा। पूरन होए हमारी।

0: दीन बंधुष्ठन के हंता तुम हो पुरी चतुर्दशकंता
1: काल पाए शिव जू अपसरा
0: काल पाए कर बिशन प्रकाशा सकल काल का किया तमाशा
1: जो की शिव की हो वेद राश्मो ज्योति हो
0: जवन काल सब लोग सवारा नमस्कार।

0: शुभ संग्रियत
1: सगरी सृष्टि खाय चंबम आज गात रूप स्वयं दुष्चिते उठवत पाता सकल मलेच करो रणकाता पूरक जवन पग परे तिहारे तिनके तुम संकट सपटारे
0: ताके कान भुनिया है
1: रक्षा होए तहे सकाला दुष्चरिष्ट रे तत्काला
0: ताके दात रिंग मालो
1: रित सिद्ध कर्मो सब होई दुष्चा छह सके ना कोई
0: काल फास्ते ताहे
1: जिन्नर नाम तिहारो का

0: रे बेचारिया
1: तुद्वाय सम्रत कोए ना ही कृपा कर बनवारिया
0: एस नोहर थाओ ना ही शब्द लाग सवारिया
1: कहे नानक लिवे पाचो क्या करे बेचारिया
0: आनंद आनंद सब को कह आनंद गुरु ते जानिया
1: जाने आनंद सदा गुरु ते कृपा करे प्यारिया
0: कर कृपा किल विख कटे ज्ञान अंजन सारिया
1: अंदरो जिनका मोह टूटा तिनका सबद सचे सवारिया
0: कह नानक एहो आनंद

0: पीवो अमृत सतरो हर रंग जप्यो सारंग पानी
1: यह नानक सदा गावो यह सच्ची बाणी
0: सतगुरु बिना होर कच्ची है बाणी
1: बाणी ता कच्ची सतगुरु बाजो होर कच्ची बाणी
0: कहंदे कच्चे सुनदे कच्चे कच्ची आख वखाणी
1: हर हर नित करै रसना कहा कछु न जानी
2: चित जिन का हिरलिया
0: माया बोलन पे रवानी
1: कह नानक सतगुरु बाजो होर कच्ची बाणी
2: गुर का शब्द रतन है
0: हीरा जित चढ़ाओ
1: शब्द रतन जित मन लागा ए होआ समाओ
2: सब से ती मन मिलिया सच्चे लाया पाओ
1: आपे हीरा रतन आपे जिसनो दे बुझाए
0: कह नानक शब्द रतन है हीरा जित चढ़ाओ
1: सिर्फ सकत आप उपाय कह करता आपे हुक्म वरताए
0: हुक्म वरताए आप वेखे गुरमुख किसे बुझाए
1: थोड़े बंधन हो वह मुकत शब्द मन वसाए
0: गुरमुख जिसनो आप करे सो हो वे एक सो लिवलाए
1: कह नानक आप करता आपे हुक्म बुझाए
0: सिमरत शास्त्र पुन पाप विचार ते तत्ते सार न जानी
1: तत्ते सार न जानी गुरु बाजो तत्ते सार न जानी
0: तई गुणी संसार प्रभ सुत्ता सुत्या रहण बेहानी
1: गुरु की कृपा ते

आयो शरण दीन दुख पंजन चितव तुमरी ओर अपै पद दान सिमरन स्वामी का प्रभ नानक बंदन छोर आयो शरण दीन दुख भंजन चितवा तुमरी ओ